नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा, क्यों को कढे गणा। नानक बिनवे सो किछ पाइए पुर।

परम सत्कार योग साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल दे समूह कीर्तनी जथियां वालों अते श्री गुलशन कुमार तीसरी ज्वालियां वालों खालसे दे 300 साल साजना दिवस समर्पित अज ए आत्मरस कीर्तन दरबार किया जा रहा है। इस कीर्तन दरबार दे विच पहली बारी इतने सारे गुरु के कीर्तनी इकट्ठे इको स्टेज ते बह के प्रेम भावना श्रद्धा दे नाल गुरु जस आप संगतां नूं सरवण करा रहे हैं। सब तो पहला कीर्तन की सेवा कर रहे हैं साडे सिख कौम के महान कीर्तनीय इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल के चेयरमैन भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले। इन्हों के नाल वाजे ते सेवा कर रहे हैं इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल के उप चेयरमैन भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। नाल बैठे हैं उप प्रधान संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले और उन्हां दे नाल बैठे हैं भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी कौंसल दे खजांची। उन्हां दे नाल बैठे हैं भाई गुरचरण सिंह जी रसिया लुधियाने वाले जनरल सकत्तर कौंसल दे। ए पहली वारी है जो ए कौंसल दे सारे कीर्तनी जथे निष्काम भावना दे नाल गुरु कीआं संगतां दी सेवा कर रहे हन। इन्हां गुरु के कीर्तनियां दी भेटा केवल वध तों वध संगतां नूं गुरु दे नाल जोड़ना है। इस भावना नूं मुख रख के ए सारे जथे सेवा कर रहे हन। आओ सब तों पहलां भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वालियां पासों आपा नाम दी महिमा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। पवित्र शब्द गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना आड़ दाम को छिपरो होयो लाखे।

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच नाम दी महिमा नूं वर्णन कर रहे हैं कि नाम मनुख नूं किथे पहुंचा देंदा। नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए, नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां सों क्या रीश। नाम दी महिमा, भगत नामदेव शींबा जिसने भगती कीती, राजे महाराजे अमीर गरीब सारा संसार आके नमस्कारा करन लगा, ये किदा सदका है, नाम दी बरकत है। आड़ दाम को शीपरो जिदी अद्धी कौड़ी भी कोई कीमत नहीं सी, कोई आदर दे के कोल नहीं सी बैठन देंदा, जपया नाम मन करके, ते जदों जपया ता फिर राजे महाराजे आके नमस्कार करन लगे। ये नाम दी महिमा है। कबीर भगत ने नाम जपया, गुणा दा खजाना बन गए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। किदे सदके? नाम दे सदके। गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। एडी प्रीति पै गई कि एक भी श्वास बिना जपन दे हुण व्यर्थ नहीं हो सकता। आख्या कम कार क्यों छड बैठे हो, तो कबीर जी कहने जब लग तागा बाहों बेही तब लग विसरे राम सनेही। जदों तागा खड़ी दा टुट जांदा है ते फिर उसनू नलकी विच पाके मुंह दे नाल खिचना पैंदा है, तां ओ श्वास मेरा बिना जपन दे चला जांदा है, व्यर्थ हो जांदा है, ते मेरा जपन तो बिना श्वास मेरी मौत है, आखां जीवां विसरे मर जा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू नाम दी प्रेरणा दित्ती कि नाम किथे पहुंचा दिंदा है मनुख नू। रविदास टवंता टोर नीत, भगत रविदास मरे होए टोर टोण वाला। ते जदों नाम सिमरन विच जुड़ गया मन, ते फिर की होया, भगवान दे दर्शन होए। जो बचन करदे हन ओ बचन कदे व्यर्थ नहीं जांदा, परमेश्वर आप आके रसना ते बैठ के बख्शिशां करन लगे। रविदास तवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया प्रगट होआ साध संग। साध संगत विच प्रगट हो गया भगत रविदास, भगत भगत जग वज्जिया, वज गया कि रविदास वड्डा भगत है, श्रोमणी भगत है। उच्चारण करो श्री, इसलिए प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया। भगत सैन जी ने जदों सिमरन कीता, भगतां दी महिमा सुनी आपने के भगत रविदास वड्डा भगत है, कबीर जी दी जय जयकार हो रही है, नामदेव दी जय जयकार हो रही है, तां सैन जी दे मन विच भी एक ख्याल आया जे मैं भी जपां तां मेरा भी संसार ते आउणा सफल हो सकदा है। ते जदों जुड़ गए सिमरन दे विच, सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदे वस्या पार ब्रह्म। जदों नाम रूपी पार ब्रह्म हिरदे विच वस गया, फिर भगतां दी कतार विच जा खड़ोते, भगतां में गणिया। हुण इन्हां जातियां दा नाम जदों तन्ना जट जी ने सरवण कीता ना, भई जय जयकार हो रही है भगतां दी, ते नामदेव दे मन विच भी प्रेरणा आई, क्योंकि कीर्तन सतसंग इसे लई सरवण करीदा कि तिना देख मन चाओ उठंदा,
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਜਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੇ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਵਧਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ

0: नाम विच कितनी बरकत है। भगत कबीर जी नू कोई पुछन लग्या कि महाराज ओ प्रभु दा सिमरन किवें करिए, उस मालक दा सिमरन किस तरह करिए, तां कबीर जी कहंदे न राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जे जपना तां त्रूप वर्गी दृढ़ता होवे, प्रहलाद वर्गी दृढ़ता होवे। प्रहलाद ने भी अपने पिता हरनाकश नूं कह दिता सी, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो अवर परन स्यों नहीं काम। जा जो करना ही कर ले, मैं राम नाम जपना नहीं छड़ सकदा। मां ने समझाया प्रहलाद नूं, भई तो इको एक मेरी अख दा चानन है, मैं किवें जीवांगी तेरे तो बिना, तेरा पिता तैनूं मरवाउणा चाहुंदा। छड़ राम नाम जपना, हो जाने इसे दा ही नाम जपी जा। तां प्रहलाद जी कहन लगे, मां मैं ओ पुत्र नहीं बनना चाहता जेड़े पुत्र अपनी कुल नूं गाल पवा देंदे हां, अपनी कुल नूं दाग लवा देंदे। गुरु की बाणी विच लिखिया, पुत्र प्रहलाद स्यों कहा माए, परविरत ना पढ़ो रही समझाए, निर्भव दाता हर जीव मेरे नाल। प्रहलाद कह रहा है, ओ निर्भव दाता मेरे हृदय विच वस रहा है, भला मैनू कौन मारन वाला जवे। निर्भव दाता हर जीव मेरे नाल, जो हर छोड़ो तो कुल लागे गाल। जेड़ा मनुख अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम नहीं करदा, महाराज कहंदे ने उसनू सौ उलांबे तां दरगाह विचों दिने मिलदे हन, ते हजारां उलांबे रात नू मिलदे हन। भई अमृत वेला भी तू सौ के बिता देता, सौ उलांबे दिने के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। तैनू हंस बनाया सी तू, फिर डड्डा कीड़िया वाल तेरा ख्याल है, डड्डा कीड़िया रूपी धंधिया में ही हर वेले रुझिया है। तो प्रहलाद जी कहन लगे, मां ना ओ मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम बसे मन माहे। इसलिए मैं राम नाम जपना नहीं छड़ सकता। भगत कबीर जी भी दस रहे हैं, मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़, एक राम ना छाडो गुरे गार। मैं जे अपना नित नेम त्याग देवा, अपना धर्म त्याग देवा, मेरे गुरु नू गाल लग जाएगी, ते जेड़ा मनुख गुरु वल उंगली करा रहा है, वह कदों बख्शिया जाएगा। भाई धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने भी छाडे ते यही उपकार किया, भाई गुरु वाले बनो, यही बख्शिश की। कोई जात पात ऊंच नीच दा पेव पादन भाव नहीं रखिया। बाई तार दे पहाड़ी राजिया ने सुनिया भेजा सी, महाराज असी अमृत छकन नूं तैयार हां, पर साडे वास्ते अमृत दा बाटा वखरा तैयार कीता जावे। असी इना नीच जातियां नाल बह के अमृत नहीं छक सकदे, क्योंकि इक्के बाटे विच अमृत दी दात देनी पैंदी है, अमृत पीना पैंदा। महाराज कहन लगे, कदी नहीं हो सकता, ये जगत दे जितने जीव हन अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार हन, ते सारे भरा भरा हन, कोई ऊंच नीच जात पात नूं मैं अंदर नहीं वड़न देना। ते 300 साला खालसे दा साजना दिवस आ रहा है, हजूर ने बख्शिश कीती सी अमृत दी दात साडे मुख विच पा के सानू गुरु वाले बनाया। एक वेरा प्यार नाल आखो, धन गुरु गोबिंद सिंह,
1: धन गुरु गोबिंद सिंह,
0: जिन्हां ने बख्शिश करके रहमतां करके अपना सब कुछ गुरु वालियां दी झोली विच पा देता। मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है, सब ही इन ही को। जेड़ा सपुत्र हुंदा है ना, पिता उसनू खजाने दियां चाबियां ही फड़ा देंदा है, भाई हुण मैनू आराम कर लैण दे, हुण तू कम चला। तो 300 साला ते साजना दिवस ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਈ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਗੋਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੈ ਜਾਣੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਰਸ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਛੱਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਹੇ ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਜੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਢ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ।

के भगत मेरे नाल जुड़े है, अपना काम भूल गए है। जे राजे की मालिश कर इन आ गया, राजा इन सजा देवे।

नमो श्री पढ़ती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचारदे ने, ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ए नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री।

द्वै शुभता हाथ सोही शुभता हाथ सोही नमो लोहे की पोत्र का झलहे लहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बाण गंगा तरंग तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती

खंडो खड़ग अस्त्रपान खंडो खड़ग तुक्त तवर अर्ते अस्त्रपान खंडो खड़ग तुम्बक तवर अर्ते सैप सरोही।

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुट नडाक आगर्दन तीरं तुट नडाक आगर्दन तीरं तुट नडाक आगर्दन तीरं

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइया बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए। दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया, लंक

0: देश खालसे को तुर्क जाएंगे पार, देश खालसे को तुर्क जाएंगे पार।
1: लाख सौ एक लड़ा चरे सिंह
0: झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौ झुकाए, सवा लाख जब झुके पलीता, सवा लाख जब झुके पलीता, तबे खालसा उदे

साहेब की सेव करे आपे बख्शे दे दिसते ऊपर नाई आन करे डर पुछता आए न जाए ना दुखता ना मेरा ते

छत्री को पूत हां। चढ़दी कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह जी। छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, तैसा पे आवत हो जो करो और जंजार जितो ग्रह को तुहे त्याग कहा जितता मैं धरो। और जंजार जितो ग्रह को तुहे त्याग कहा चितता मैं धरो। अब रीज के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आम की आग निदान बने

शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो शिवा पर मोह है शब तर मनते कब हूं न करो न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखाओं सिखाओ अपने ही मन को ए लाल चाहो।

खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना, मेरा तो नाम

आन को दान न लागत नी को आन को दान न लागत नी को आज भले इनी हो दियो आज भले इनी हो दियो जग में जस और दियो सभी को जग में जस और दियो।

गुरमुख जन्म सवार दरगे सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका सदे उठी जा गुरमुख सदे जान आवन कल्या गुरमुख सदे जान।

जे जे तुमरे ध्यान को। गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे। साफ फरमाते जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक जिस जन को सदा नमस्कार। नानक जिस जन को सदा नमस्कार। नित जपिए सांस

शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहा जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया एक शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले। अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे। तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता होए कर गर बावे तृण समान कछ संग न जावे। बो लश्कर मानख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश। सबते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। किसे न बदाए आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले विरधारे। अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं धरवे हर दरगह को कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए। जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचर ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु के पाते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख को उठकावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे पढ़ापत होए। कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार। जैसी दिश करे तैसा होए आपे आप आप पर सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग सबते दूर सबू कै संग। बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रह समाए। आप उपदेश समझे आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार सब कुछ उसका ओ करने हार। उसते पिन कहो किच होए थान थनंतर एक है सोए। अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपारे अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवन बखान। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। पवित्र पवित्र पवित्र।

0: पापत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी तेरा अंत न पार बारिया
1: अंत न
0: पावत देव सबे अंत न पावत देव सबे

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है, ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखदा है। पर एक गल है, ओदा न्याओ सच्चा है, आप भी ओ सच्चा है, ते ओदा न्याओ भी सच्चा है।

जेड़े सिर बीबियां पट्टियां कर करके वाया कर दिया सन, अपनी मांग विच संदूर भरिया कर दिया सन, से सिर काती मुनियां ओ जेड़े सिर ने बाबर दे शिपाहियां ने कैंचियां नाल मुन दिते ने, ते गल जेड़े ने उन्हां विच सोवां

जदों एवें सन अपने अपने लाड़ियां दे कोल बैठियां किन्नियां सोहणियां लगदियां सन डोली ते चढ़ के आईयां ते किन्नियां खुशियां कीतियां।

कदू ए दाने मुकणगे, कदू बंद खलासी होवेगी। साहब जी कहन लगे मरदानिया, उस अकाल पुरख नू चेते कर, सब कुछ हो जाएगा। मीर खान उन्हां कैदियां नू देखदा होया उस जगह आया जिथे धन गुरु नानक साहब बैठे सन। अखां बंद ने, चक्की अपने आप चल रही है, दाने अपने आप पै रहे ने, आटा बनी जा रहे है। मीर खान भजे है, बादशाह सलामत। कैदियां विच दो एहो जे फकीर ने जिन्हां दी चक्की अपने आप पई चलदी। बाबर नंगे पैर अपने दरबारियां दे नाल उस कैदखाने विच पहुंचे। गुरु साहिबा दी अखां बंद ने, बाबर हाथ जोड़ के सामने बैठ गया।

कर कर मंडप महला कहां सुपंक सराय। ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया।

इस माया दे करके सारी लड़ाई हुई, पर हैरानगी दी गल ए कि ए माया पापा तो बगैर कठी नहीं हुंदी ते मरगियां दे नाल नाल भी नहीं जांदी। जदू आदमी मर जावे ते माया ओदे

हिंदवाणी, तुरकाणी, पटियारण ते ठकुराणी। किसी का सिर पट गया, किसी दियां बाहां वड्डियां गईयां, कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया, भाव कि सिपाहियां ने किसी का भी लिहाज नहीं।

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना है, मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाने विच, किथे जाके रोईए क्यों के सब कुछ तेरे हुक्म विच है, तू जो चाहे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख दसी।

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावा मज्जा चराण वास्ते ले जांदा है सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लै के वापस आ जांदा है। इस तरह ए इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन का दिन जदों मुक जाएगा

वो क्यों मर गया? ओनू नहीं सी मरना चाहिए। जेड़ा मर गया है ना ओनू तुसी रोंदे हो। साहब जी कहंदे ने ओने तो मरना ही सी। जिनू तुसी रोंदे हो अपना फिक्र करो कि कल नू तुसी मरोगे तो तुहानू कौन रोवेगा।

चंगे गुणा का व्यापार करो, अवगुण छड़ दियो, गुणा नू संभालो, एहो जे काम करो कि उस दरगाह विच तुहानू

थोड़ी दूर जाके बैठ गए। साध संगत कैसा है गुरु? ओ रब नाल बहुत प्यार करदा है, पर इन्हां दुखी लोकां बारे सोच के आप दुखी हो गया। भावे ये लोग पापी सन, इन्हां नूं सजा मिलनी चाहीदी सी, पर उस गुरु नानक दा मन दुखी हो गया। उन्हां दुखी लोकां दा दुख देखिया, ते जिहड़े रब दे नाल गुरु नानक प्यार करदा है, अज उस नूं इक ताना भी मार दिता। कादे वास्ते? साडे लोकां वास्ते, कि ये लोग दुखी ना हो। पर असी लोग किन्ने अकिरत कण हां कि फिर भी उहदा नाम नहीं जपदे। उस अकाल पुरख नूं कहड़ा ताना मारिया? धन गुरु नानक साहब ने। आसा राग विच ये शब्द गुरु साहब जी बयान करते ने। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान बाबर दा असली वतन सी, अपना देश। खसमाना कहंदे ने रखिया करनी। ऐ अकाल पुरख, बाबर दा जिहड़ा अपना देश सी, ओथे दे रहण वाले जिहड़े लोग सन, उन्हां नूं तू बचा लिया। पर जिहड़े हिंदुस्तान दे लोग सन, इन्हां नूं सजा दवा दित्ती। खुरासान बचा लिया ते हिंदुस्तान नूं डरा दित्ता।

अपने ते दोष नहीं लिया। इमना बाद लोग बड़े पापी सन, उन्हां लोकां नूं सजा देनी सी, पर तू जम कर मुगल चढ़ाया। मुगलां नूं जमा दा रूप दे के इमनाबाद ते भेज दिता, ते उन्हां ने इत्थे दे लोकां नूं कतल कर करके गलियां दे विच रुला दिता।

पर फिर ताना मारे फिर शुक्र विच आ गए। ऐ करता या काल पुरख तू सारिया दा है, पर एक गल है जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू, जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा। पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी, बाबर दे कोल बंदूकां सन ते एमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन। ए कोई

शरीर दे नाल चोज कर दें जो मृतक मिथ्या सिंगा ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनु कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है इस

सार के तेरे जितने रस भोग तू सुखां वल भजदे चाहना कि मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकदी है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए

सोना मनुष्य जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते, माता के उदर में प्रतपाल करे, माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तामी तेरे सारे प्रबंध कीते, कदी अकाल पुरख दे उपकारा नू ही चेते करके तू जप लेंद, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जम पुरवादा, क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिना ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी, आख्या तिन्ना मुख डरावने जिना विसारियो नाओ, एथे दुख घनेरिया अगे ठोर ना थाओ, पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन मादानिया त्यों मथे धर्म राय, एडी सजा दा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा, इसलिए हर का नाम जिन मन ना अरादा।

0: मत को परम भूले संसार निगुरे का है नाव बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहा सी, जा रहा सी। इन्हां दा नाम उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। ए हरिद्वार दी यात्रा ते जांदे हन हर एक साल, ते सात संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे, ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी, ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हाले तक गुरु नहीं धारण किया, ये तेरी यात्रावां असफल हैं, बेकार हैं, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहा। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई, ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुर मुकत ना पाईए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तां गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग ए अजीब है, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थे ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, सी इह गल नहीं है। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल, गुरपुरा पेटियो वडभागी मने पया परगासा। आओ निगरी पुरुष दा यह हाल है, ते आओ वडभागियो असीं सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देव, नाम दी बख्शिश करदा रवे सदा, सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।